हम जैसे अपराधी अवर कोई रखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए, तू गुर पिता तू है गुर माता,

परम सम्मान योग जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाहे मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों अज दे इस विशेष हफ्तावारी दीवान दी हाजरी आप जी ने गुरु कृपा दे नाल भरी है और सतगुरां जी दे पावन पवित्र इलाक बचना दा कीर्तन आप जी नू साडे अति सत्कार योग इस दर कर दे गुरु के झाड़ू बरदार गुरु के वजीर भाई साहब भाई मनजीत सिंह जी भाई अमरजीत सिंह जी हजूर दी इलाही गुरबाणी नल आपां नू जोड़ रहे सन। आओ जो पिछले हफ्ते एक अर्ज कीती सी कि जदों भी ये दसंबर का महीना हर साल आउंदा है ते ये दसंबर का महीना जे किते कोई बैराग ते टिके कोई किरदे वाला परचोले ते उस दे किरदे नू उस दे अंदर नू चंजून के चला जाता है। आपां इस अत दी सर्दी दे महीने विच भावे हिंदुस्तान दी धरती भावे बाहर आप बैठे हो इस अत दी सर्दी दे मौसम विच आपां घर निक माने हां अपने बच्चियां नू अपने माता पिता नाल अपने परिवार विच सुख आनंद नाल दिन कढ़ने हां पर जदों किते तवारीख दे हिस्ट्री दे इतिहास दे पन्नियां नू पलट के देखो ते अज तो 300 साल पिछे चले जाओ ते हैरानगी हुंदी है सन 1704 दसंबर दा महीना जेड़े गुरु के सिखा उस महीने दा एक एक दिन किते तू पढ़े श्रद्धा भावना नाल ते देख गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह दसवां गुरुदेव उन्हें इस महीने विच किन्नी कु वड्डी कुर्बानी सिख सिख लई कर दित्ती अपने पुत्र अपने सत्कारयोग माता अपने बेगमपुरे वर्गे शहर आनंदपुर साहब की धरती नूं त्याग के सब कुछ लेखे ला के उस अकाल दे शुकर विच जुड़ के तेरे लिए गुरु जिहड़ा परमेश्वर दे दर तो दुआवां ही मंगदा रहा ते चित कीता सी जिथे इस महीने विच साके आउणे ने उत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी दे इतिहास विच जिहड़ी पहली लड़ाई होई है इनू केवल इना समझियो कि शायद कोई प्रसाद की गल नहीं जेड़ी पहली जंग मेरे गुरुदेव ने पौंटा साहब की धरती से लड़ी है चित किया अपने बजुर्ग अपने सतगुरु के इतिहास तो भी जाणू होइए उस जंग लड़न के कारण की सन ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस जंग विच सानू की सिख्या दित्ती जेड़े कुर्बानी देने वाले ने इस संबंधी अर्ज करनी आप कृपा करके एकाग्रता बख्शिया जे साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरणा दी टेक लईए हजूर आप कृपा करके विच वरतो साडे अंदर नू टिका एकाग्रता अपने चरणा दी भावना श्रद्धा बख्श दियो करो कृपा साध संगत गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कार योग भाई साहब जी होरी जो हजूर की पवित्र बाणी विचों असानू शब्द सरवण करा रहे सन बिन भागा सतसंग ना लभै बिन संगत मैल भरी जय जियो एक खिन इस संबंधी अर्ज करके अगे तुरने हजूर कहिंदे ने मनुख दे अंदर दी मलीनता जिहड़ी है वह सत संगत तो बिना उतर नहीं सकती ते दूसरा वचन कीता सत संगत भागा तो बिना कदी नसीब नहीं हो सकती। गुरु ग्रंथ

नानक जन केरा जित मिले चुके सब सोग संतापे परम सम्मान योग जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाहे मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों अज दे इस विशेष हफ्तावारी दीवान दी हाजरी आप जी ने गुरु कृपा दे नाल भरी है और सतगुरां जी दे पावन पवित्र इलाही बचना दा कीर्तन आप जी नू साडे अति सत्कार योग इस दर कर दे गुरु के झारू बरदार गुरु के वजीर भाई साहिब भाई रणजीत सिंह जी भाई अमरजीत सिंह जी हजूर दी इलाही गुरबाणी नाल आपां नू जोड़ रहे सन। आओ जो पिछले हफ्ते एक अर्ज कीती सी कि जदों भी ये दसंबर का महीना हर साल आउंदा ते ये दसंबर का महीना जे किते कोई बैराग ते टिके कोई किरदे वाला प्रचोले ते उस दे किरदे नू उस दे अंदर नू चंजून के चला जांदा है। आपां इस अत दी सर्दी दे महीने विच भावे हिंदुस्तान दी धरती भावे बाहर आप बैठे हो इस अत दी सर्दी दे मौसम विच आपां घर निक माने हां अपने बच्चियां नू अपने माता पिता नाल अपने परिवार विच सुख आनंद नाल दिन कढ़ने हां पर जदों किते तवारीख दे हिस्ट्री दे इतिहास दे पन्नियां नू पलट के देखो ते अज तो 300 साल पिछे चले जाओ ते हैरानगी हुंदी है सन 1704 दसंबर दा महीना जेड़े गुरु के सिखा उस महीने दा एक एक दिन किते तू पढ़े श्रद्धा भावना नाल ते देख गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह दसवां गुरदेव उन्हें इस महीने विच किन्नी कु वड्डी कुर्बानी सिख सिख लई कर दित्ती अपने पुत्र अपने सत्कार योग माता अपने बेगमपुरे वर्गे शहर आनंदपुर साहब की धरती नूं त्याग के सब कुछ लेखे ला के उस अकाल दे शुकर विच जुड़ के तेरे लिए गुरु जिहड़ा परमेश्वर दे दर तो दुआवां मंगदा है ते चित कीता सी जिथे इस महीने विच साके आउणे ने उत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी दे इतिहास विच जिहड़ी पहली लड़ाई होई है इनू केवल इना समझियो कि शायद कोई प्रसाद की गल नहीं जेड़ी पहली जंग मेरे गुरुदेव ने पौंटा साहब की धरती से लड़ी चित किया अपने बजुर्ग अपने सतगुरु के इतिहास तो भी जाणू होइए उस जंग लड़न के कारण की सन ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस जंग विच सानू की सिख्या दिती जेड़े कुरबानी देने वाले ने इस संबंधी अर्ज करनी आप कृपा करके एकाग्रता बख्शिया जे साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरणा दी टेक लईए हजूर आप कृपा करके विच वरतो साडे अंदर नू टिका एकाग्रता अपने चरणा दी भावना श्रद्धा बख्श दियो करो कृपा साध संगत गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

गुरु अर्जुन विघ्न के नाशक, विघ्न के नाशक श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी, गुरु हर कृष्ण मनावो बहोरी।

0: बरा से हर गोविंद चंद को बोलन हर बिहारे सुन चंदू चिंतायत अनक उपाओ विचार। चौबीस
1: वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र खजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरु सवारे सत संगी जनों, हफ्तावारी जो रात्रि दे विशेष दीवान सजदे ने, इस दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। आप जी ने अमृत बचना दा कीर्तन सत्कार योग भाई साहब जी कोणा पासों सरवण कीता है। दो शब्द उन्होंने कीर्तन विच असानू सरवण कराए ने। पहला शब्द सी तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकूं, तू ठाकुर ऊच भगवान। सहज धन गुरु रामदास कृपालू जी का उचारण किया हुआ यह शब्द, जिस विच दातार ने उस परम पिता परमेश्वर वाहगुरु जी के गुणा नु जिथे बयान किया है, उथे एक सानू गल दृढ़ करा दिती कि मैं अपनी जिंदगी विच केवल सहारा परमात्मा का लिया है। दुख होवे, सुख होवे, खुशी होवे, गमी होवे, मैं अपने

कोई नहीं जानता हूं। जे परमात्मा मेल करे तो उन्हें सारी धरती का बादशाह बना सकता है। महाराज यह किवें हो सकता है? साहब कहते ने हो सकता है, जो असंभव है वह संभव हो सकता है। ते नाल उदाहरण की दिती, कहन लगे देख उन्हें बकरी ते शेर नू एक थां ते बने। अज तिकरा कभी तके है कि बकरी ते शेर एक किले ते बजे कौन? साहब कहते ने विचे धरती विचे पानी विच काष्ट अगणतरी जै, देख तीन हिस्सा पानी है एक हिस्सा धरती है। ते परमात्मा ने इस धरती नू अपनी खिच दे के चार चुफेरे पानी होने के बावजूद टिकाया है। यह मानो जिवें उन्हें बकरी ते शेर दोनों टिकट से बने हुए चार चुफेरे पानी है। आप जो ग्लोब नू तकने हैं चार चुफेरे पानी पानी सानू नजर आता है, धरती का किन्ना कु हिस्सा है? साहब कहने विचे धरती विचे पानी विच काष्ट अगणतरी जै, बकरी सिंह एक तय थाए रख है। मन हर जप भरम पाओ दूर कीजे। जे पानी विच धरती नू टिकाई बैठा है ते मना कल्पी ना जा, रब नू सिमरिया करो तेरे भी डर जरूर दूर करेगा। दूजा शब्द गुरमुखा ने सरवण कराया के शाम सुंदर तज नींद क्यों आई महा मोहनी दूता लह। शब्द विच परमाणु ना बड़े बैराग दे भिजे दिते। मैं इस करके अर्ज कर रहा क्योंकि आपां इह शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विचों सरवण कीते नी। ते इक मैं बेनती कर दिया गुरु के सिखो, राग तां इक भांडा है। मैं कहना कि गुरु साहिब दे बाजमुखी किते चरण पै जाण, असीं कहने आ इह घर भागां वाला जी इत्थे गुरु दे चरण पै गए। जिस गड्डी विच गुरु ग्रंथ साहिब दा स्वरूप लिजाइए आप उस गड्डी नूं देख के झोके नमस्कारा करने आ, क्यों? इहदे विच मेरे साहिब दी असवारी भी आउंदी है। मैं कहना राग किन्ना कु पवित्र है जिस भांडे विच मेरे बाबे नानक दा शब्द टिकिया होया। राग तां उह सेज है जिथे गुरु दा शब्द निवास करदा है, पर बदकिस्मती है मैं शब्द तां वरत्या है। दिनों दिन आपां देखने पया मेहनतां वाले घालना घालण वाले अपनी जिंदगी नूं समर्पित होके चलण वाले। मैं पिछले दिन एक बेनती की सी, आउणा मैं इतिहास ते वे, एक शब्द हुंदा है लोड़, एक शब्द हुंदा है लगन। लोड़ विच ते लगन विच जमीन आसमान का फर्क है। जिन्नी देर तक मेरी लोड़ है मैं कथा करनी, मेरी रोटी नहीं चल रही। जितन मेरा काम बन गया मैं कह दिता चलो जी अज तो बाद काम छड्या, इहदा मतलब वो मेरी लोड़ सी। लोड़ वाले बंदे छड के जांदे ने, पर लगन वाले बंदे मरदे दम तक उस कला नूं समर्पित रहिंदे। रब मेर करे कि लगन पैदा हो जाए, केवल लोड़ तक सीमित ना रहिए। आपां दूसरा शब्द सरवण कीता है शाम सुंदर तज नींद क्यों आई महा मोहनी दूता लाई। बाणी ने दोनों पक्ष रखे ने, एक नींद होवे जिदे आउण नाल साईं भुलदा है, एक नींद होवे जिदे आउण नाल सुपने विच अपनी चलकारे दे जांदा है। देखो दोनों तरह की नींद है, इधर शाम सुंदर तज नींद क्यों आई ते उधर गुरु साहिब ने बड़े कमाल दियां उदाहरणां दित्तियां। कहिंदे मैं रुबंदी सब जग रुन्ना रुनरे बणो पंखेरू, एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हों फिरों बिछोड़ी। सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए, आए न सका तुझकन प्यारे भेज न सका कोए। हुण कहिंदे ने चंगा हो जाए मैनूं नींद आ ही जाए, आओ सुभागी नींदड़िए मत सो देखा सोए। वासना विच आई कोई नींद अंदर नूं खंडाएगी, पर बैराग विच सुता होया बंदा भी रब दे गीत गाए। साहिब कृपालू मेर करन ये आपां शब्द दो सरवण कीते ने। भावां कि असी अरदास दी विचार पै करने जिवें भाई साहिब उहनां ने दस्या है कि तकरीबन तीजा साल चलदा पे। पहले साल ही यतन कीता सी जिन्हां सज्जणा ने हुक्म कीता, मैं सोचिया महीने विच काम खत्म हो जाएगा, पर ज्यों ज्यों समा लंघदा पिया गुरबाणी नूं खोजने आ इतिहास नूं पड़चोलने आ। ते मेरा ख्याल है कि कोई भी जबान जिहड़ा एक एक शब्द उहनां गुरमुखां ने अरदास दा घड़ के पाया, मैं कहना एक एक शब्द कई कई सालां दी व्याख्या दा मुताज है। एक एक शब्द जिहड़ा, इह पिछले दिन ही अर्ज कीती सी।

0: के उल्टाई पुत्र जब
1: राम राम निकी मुसलमान किसा बेईमान की कहता
0: त्याग दियो लख साठ
1: मूर्खताई समझ करके गुरु नानक की बाणी उल्टाई है छड़ता मारा राम राम।

0: का जाप करिए। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज काल जो
1: जाग रहे हैं,
0: श्री गुरु ग्रंथ प्रकाश।

से साध सुंदर जी अज सतगुरु तेग बहादुर महाराज साहब जी के अवतार धारण का गुरपुरब है। आप जगत गुरु जी ने 1678 बिक्री विसाख वाली पंचमी वाले दिन अज के सवापैर के तड़के माता नानकी जी के गोद में भाग लाने वास्ते सतगुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के पंजवें सुपुत्र गुरुता गद्दी के मालिक सतगुरु तेग बहादुर साहब का श्री अमृतसर साहब गुरु के महलों में अज अवतार होया है। सब संगतों को बधाई हो गए महाराज अवतार धारण की। जगत गुरु जी अंतर्जामी महाराज साहब सच्चे पातशाह जी के पास श्री अकाल तख्त साहब दासी के गोद में महाराज साहब जी जदों श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी माता गंगा जी ने कहा कि सपुत्र का महाराज साहब जादे का नाम रखो तो महाराज साहब श्री अकाल तख्त साहब आके मत्था टका के महाराज सच्चे पातशाह के चरणा के नाल ला के दासी जिस वक्त हजूर न मस्तक टका के गुरु तेग बहादुर साहब जी ने गोद में लै करके उठन लगी तो महाराज साहब जी ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने सतगुरु छेवें पातशाह दोवे श्री साहब जो समय आपके गल च बह रही हुई मीरी और पीरी जी दोवे सज्जे खब्बे पासे उन्हें दोहां श्री साहबां दे कब्जिया हाथ पा लिया महाराज साहब जी दासी छड़ा चाहती है आप सच्चे पातशाह छड़े नहीं हैं। उस वे महाराज साहब हस के कहने तो आपका नाम आप ही रखा लिया है उन्होंने तेग की बहादुरी करे जी जुर्म की।

0: बस है पठान, बस है बास पठान को दीनों बिपर बताई।
1: तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रही लड़ीवार कथा विच श्रवण कर रहे हां प्रसंग श्री चमकौर साहब अचानक तुरकां ने हमला किया सहिदा बेग शरनी पिया श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने। दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की थी कि मेरी स्त्री नूं खो के लै गया पठान बसी पठाना वाला। इस प्रकार देवदास नाम है ब्राह्मण का, जाबर खां पठान है। महाराज जी ने बाबा अजीत सिंह जी नू 100 के करीब घोड़ सवार दे के भेजिया। शाम 2 घड़िया दिन बाकी सी जदों चले ने, सारा पेंडा तय करके उत्थे पहुंचे। रात नूं जाके घेरा पा लिया। गुरां दा वचन सी कि सिर्फ कल्ले पठान नूं ही लियाउणा, होर किसे नूं तंग नहीं करना। महाराज दा वचन मन के पठान नूं बन्न लिआंदा रस्सियां नाल, अते उस ब्राह्मण दी स्त्री नूं भी नाल लै के आए है। आ के महाराज नूं फतेह बुला के सजे हन दीवान दे विच। आओ अगे श्रवण करदे हां सतगुरु महाराज ने की सजा दित्ती, की उपदेश दिंदे ने खालसे नूं। प्यार सत्कार नाल गज के आखो सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु
0: साहिब जी। जो पई तुरक सुबत जै सहज सुभाए, जाए अचानक घेरो पाए।
1: सहज सुभाव की बिना किसे डर तो बिना किसे खौफ तो, ये साडा राज है, मैनू केड़ा कोई कुछ कह सकदा, मैं जो मर्जी करा। इस तरह आराम दे नाल जबर खां सुता पिया है, अचानक ही जाके सिंघां ने उहदे घर नूं घेरा पा लिया।
0: किसो न आगे शस्त्र उठायो, गयो पठान सबंध चलायो।
1: क्योंकि हो सकदा है कवि जी कहंदे ने किसे ने अग्गों शस्त्र नहीं उठाया, हो सकदा वो इलाके दे विच बदनाम होवे जबर खां, पहलां भी लोकां दीआं धीआं भैणां नूं चुक लिआउंदा होवे, ताइयों किसे ने उहदी मदद भी नहीं कीती है, कोई विरुद्ध भी नहीं बोलिया है। सिंघां ने जाके बड़े आराम दे नाल उसनूं पकड़ लिया।
0: जिनी को इक तुरंग चढ़ायो, ए कुरीत फल सबन सुनायो।
1: ब्राह्मणी नूं बाहर लिआंदा, पठान नूं भी खड़ा कर लिया, पिंड वालिआं नूं इकट्ठा करके। सिंघां ने उहदा कसूर सुनाया, बई असीं इहनूं एवें नहीं लैके जा रहे, इहने आह कुकर्म कीता है, इस करके असीं इहनूं पकड़ के लै के

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुरु के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हुण उहनूं चंगीआं निहारियां खवाईआं चंगा घिओ आदक जां देना जां मिठा पा के देना ऐसियां निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: आज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेलां हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा लियाओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले त्यार करके ले आवो
0: सोने दे सोने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ये तैयार करके ले आओ
1: हुक्म मान सेवक किए त्यारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मान के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े दे वी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे तो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहणे छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कबका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहनी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया जिथे सतगुरु

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुर्तीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ करना निद तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गै है के जवै, उकसे उपर चढ़बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दे गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नूं हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नूं भजाउणा, सूरज वल नूं मूंह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जांदा है।
1: बहुत आए कर भले फंदायो, पुनजनी मंदर प्रभ आयो।
0: घोड़े नूं भजा के फंदाया, चंगी तरह छाला भी मरवाइया, वो घोड़े नूं भी पता लग जांदा कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वो भी समझ गया, क्यों गुरां दे जदों सुते सिद्धी सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नूं भी पता लग गया कि मैनूं किड्डी महान सेवा मिली है। पहला मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदर पछताउंदा है। सतगुरु महाराज घोड़े नूं इस तरह घुमाउंदे होए आ के उतरे महिलां दे सामने माता

0: सच्चे पातशाह यह महाराज तुहाडा ही पंथ है, हुण पंथ की कटिया हो रही है, भाव कट वड हो रही है, पंथ हुण हार रहा है। पहला नहीं सी दिखिया महाराज कहते जद असी बचन किया उदों तुहानू याद नहीं आए असी, यह छत्र छाया ही ठीक रहिंदी गुरु साहब की, जे छत्र छाया छड़ दिए फिर लोग चारे पासों पै जांदे हन।
1: क्यों ना संभारत हट पिछवाई कौन खता इनके घर पाए।
0: महाराज केड़ी गलती हो गई सातों, क्यों नहीं तुसी पिछे हटदे, क्यों नहीं साडी मदद करदे।
1: जेकर सिंह है अवगनियारे तौ आप के जगत उचारे।
0: जे सिंह अवगनियारे ने ता भी जग ने तो होर कुछ नहीं कहना, जग तो फिर भी यही कहेगा कि कलगिया वाले दे सारे सिंह ने।
1: इत्यादक बोलत समदाए मिले आन को हैन तवाए।
0: तो इत्यादक सारे बोलते ने तो घोड़िया भजाते ने कि महाराज नू मिलिए।
1: करत पुकार सो आए कनेरी इत हेरन गुर ग्रीव न फेरे।
0: भजाते ने घोड़े आपो अपने मगर मगर, महाराज तेज घोड़ा भजा रहे ने पर सतगुरु जी ने पिछे नू अपना मुख कीता ही नहीं है, कहंदे मैं नहीं रुकना हुण।
1: कहे बहुत प्रभ छिन पर थिरो लड़त पंथ अवलोकन करो।
0: बड़ा कहा महाराज एक छिन लई टिक जाओ, सिंघां नू देख लो सिंह किवें जंग कर रहे ने घिर गए हन।
1: कह जब रहे खरे मैं होए नौरंग सिंह मिलियो प्रभ जोए।
0: जदों बहुत कहा महाराज रुके ना, एक भाई नौरंग सिंह सीगा उन्हें उस वक्त महाराज नू देखिया ते घोड़ा भजाया।
1: तुरत तुरंग उतरियो अगवाए ऐच लकीर दई सह साए।
0: भाई नौरंग सिंह ने महाराज जी तो किन्ना ही अगे घोड़ा कढ के छेती नाल उतर के लकीर खिच दी।

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, युद्ध विच टिक के लड़ो, हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो, टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध,
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनां दे दल नूं मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन,
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वरगे बचन सन वरसम, यह वर हो गया खालसे नूं, भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु है ते गुरु खालसा है, एदी सिंघां नूं बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन,
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण वचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो, वापस मुड़े पहाड़ियां वल नूं, बहुत वीर रस अखां विच लालियां, शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अर दमणी,
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है पावे दा नाम ज्वाला बमणी, दुश्मन नूं मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी,
0: रिपो तो भाव दुश्मन नूं शमन करन वाली, नाश करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईयां।
1: श्री गुर थिर हवै तनुख संभारे,
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा ली, अपनी गलती का एहसास किया है, उस वक्त गुरां ने अपना तनुख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे,
0: महाराज ने सत तीर आसमान

3 बजे 2:30 बजे के करीब 3 घंटे पहला सूरज चढ़न तो पहर रात होंगी या समय बद करिए 6 तो 9 सवेरे पहला पहर बन गया 9 तो 12 2 पहर कहने जिन्हों 12 तो 3 तीजा पहर हो गया 3 तो 6 चौथा पहर ये दिन दे पहर बने इसे तरह रात दे तो इनू जिहड़ा है पहर रात रहिंदी कहिंदे ने पहर रात रहिंदी 3 घंटे रात रहिंदी होवे जदों 2:30 बजे 3 बजे के करीब सर्दियां चलो 3 बजे हो गए गर्मियां च 2:30 बजे हो गए इन्ना क समा तां परपक्ता नाल निभावे इशनान करे फिर सुचम रखे संजम